माथी कमेज मेरो शिरमा ढाका टोपी चार चार छत्तीस वर्ण को यो फुलबारी, यो फुलबारी को महु बके दारी।

खाएनी सब खाएनी रक्सी भने रक्सी मिठा के रक्सी सबै होटल गाली चुरु सुरुमा।

में क्या अम्मा भट्टी में बैठ भागो मेरे दो जान के घर तो हो नो कहीं मौसम मार लागो इन बनता दूसरा बोले प्रदे।